त्वा प्रसाद तोमर छंद हर जन्म मरण विहीन दस चार चार प्रवीण अकलंक रूप पार अंशिज तेज उतार अनभिज रूप दुरंत।

मानस की जात सब एक पहचानबो। करता करीम सोई राजक रहीम, ओई दूसरो न भेद कोई भूल भ्रम मानबो। एक ही की सेव सब ही को गुरुदेव, एक एक ही स्वरूप सब एक ज्योत जानबो। देहो राम सीत सोई पूजा निवाज, ओई मानस में एक बयान एक को भ्रमाव है। देवता देव जज गंधर्व तुरक, हिंदू न्यारे न्यारे देशन के।

जैसे एक आग ते कनु का गोठ आग उठे न्यार न्यार होय के फिर आग में बिलाहेंगे। जैसे एक धूर ते अनेक धूर पूरत है दूर के कनु का फिर दूर ही समाहेंगे। जैसे एक नद दे तरंग कोट उपजत है पान के तरंग सब पान ही कहेंगे। जैसे विश्व रूप ते अभूत भूत प्रकट होए ताही ते उपज सब ताही में समाहेंगे। केत कछ मछ केत उनको करत भछ केत अच वच हो सपच उड़ जाहेंगे। केत नब बीज अच बच को करेंगे भज के तक प्रतच हो बचाए खाए जाहेंगे। जल कहाँ थल कहाँ गगन के गौन कहाँ काल के बनाए सब काल ही चबाहेंगे। तेज जीव तेज में अतेज जैसे तेज लीन ताही ते उपज सब ताही में समाहेंगे। कुकत फिरत केत रूबत मरत केत जल में डुबत केत आग में जरत है। केत गंग बासी केत मदि नाम का निवासी के तक उदासी के भ्रमाई फिरत है। करवत सहत केत भूम में गड़त केत सुआ पे चढ़त केत दुख को भरत है। ज्ञान में उड़त केत जल में रहत केत ज्ञान के विहीन जग जा रही मरत है। सोध हारे देवता विरोध हारे दानो बड़े बोध हारे बोधक प्रबोध हारे जापसी घास हारे चंदन लगाए हारे चोआचार पूज हारे पाहन चढ़ाए हारे लापसी गाह हारे गोरन मनाए हारे मड़ी मटली पहारे भीतन लगाए हारे छापसी गाए हारे गंधर्व बजाए हारे किन्नर सब पच हारे पंडित।

मित्रं न सत्रं न पितरं न मातं न नेहं न गेहं न कामं न धामं न पुत्रं न मित्रं न सत्रं न भामं अलेखं भेखं जूनि स्वरूपं सदा सिद्धता बुद्धता वृद्ध रूपं नहि जान जाई कछु रूप रेखं कहा बासता को फिर कौन भेखं कहा नामता को कहा कह कहा वे कहा कह बखानो कहे मैं न आवै।

नने हंग नगे हंग सने हंग सनाथे उदंडे अमंडे प्रचंडे प्रमाथे न जाते न पाते न सत्रे न मित्रे सुभूते भविखे भवाने या चित्रे नारायण नरंगं न रूपं न रेखं न लोभं न चोभंग भूतंग भेखं न सत्रंग न मित्रं न नेहं न गेहं सदेवं सदा सर्व सर्वत्र सनेहं न कामं न क्रोधं न लोभं न मोहं जोनि अच्छयाद अद्वै अजोहं न जन्मं न मरणं न वर्णं न व्याधं न रोगं न सुगं भय निर्विखादं अछेदं।

रूपं कहूं परम प्रज्ञा कहूं सर्व रूपं कहूं नेह गृहं कहूं देह दुखं कहूं औषधि रोग के सुख सुखं कहूं देव विद्या कहूं दैत बानी कहूं जक्ष गंधर्व में किन्नर कहानी कहूं राजसी साधकी तामसी हो कहूं जोग विद्या धरे तापसी हो कहूं रोग रहता कहूं जोग जुगतं कहूं भूमि की भुगत मैं परम भुगतं कहूं देव कन्या कहूं दानवी हो कहूं जज विद्या धरे मानवी हो कहूं राजसी हो कहूं राज कन्या कहूं सृष्ट के पृष्ठ के ऋष पन्या कहूं वेद विद्या कहूं व्योम बानी कहूं कोक की काव कथा कहानी कहूं अद्र सारंग कहूं भद्र रूपं कहूं मद्र बानी कहूं शुद्र स्वरूपं कहूं वेद विद्या कहूं काव रूपं कहूं चेष्टा चार चित्रं स्वरूपं कहूं परम पुराण को पार पावे कहूं बैठ पुराण के गीत गावे कहूं शुद्ध शेखं कहूं ब्रह्म धर्मं कहूं वृद्ध अवस्था कहूं बाल कर्मं कहूं ज्वाल स्वरूपं जरा रहत देहं कहूं नेह देहं कहूं त्याग गृहं कहूं जोग भोगं कहूं रोग रागं कहूं रोग हर्ता कहूं भोग त्यागं कहूं राजसाजं कहूं राजरीतं कहूं पूर्ण प्रज्ञा कहूं परम प्रीतं कहूं आरबी तोर की पारसी हो कहूं पहलवी पस्तवी संस्कृति हो कहूं देश भाख्या कहूं देव बानी कहूं राज विद्या कहूं राजधानी कहूं मंत्र विद्या कहूं तंत्र सारं कहूं जंत्र जीतं कहूं शास्त्र धारं कहूं होम पूजा कहूं देव अर्चा कहूं पिंगुला चारणी गीत चर्चा कहूं बीन विद्या कहूं गान गीतं कहूं मलेज भाख्या कहूं वेद रीतं कहूं नृत्य विद्या कहूं नाग बानी कहूं गारडु गूढ़ कथा कहानी कहूं अक्षरा पक्षरा मच्छरा हो कहूं वीर विद्या अभूतं प्रभा हो कहूं छल छाला धरे छत्रधारी कहूं राज साजं।

जगात करता सदैव हरता सनात आसन अडोल अनुभूत करम दाता दयाल अनुभूत धर्म। जय शत्रु मित्र नहीं जन्म जात जय पुत्र भ्रात नहीं मित्र मात जय करम भरम नहीं धर्म ध्यान जय नेह गेह नहीं ब्योतपान जय जात पात नहीं शत्रु मित्र जय नेह गेह नहीं चैन चित्र जय रंग रूप नहीं राग रेख जय जन्म जात नहीं भरम भेख जय करम भरम नहीं जात पात नहीं नेह गेह नहीं पितर मात जय नाम धाम नहीं वर्ग ब्याद जय रोग शोक नहीं शत्रु साध जय त्रास वास नहीं देह नाश जय आद अंत नहीं रूप रास जय रोग शोक नहीं जोग जुगत जय त्रास आस नहीं भूम भुगत जय काल ब्याल कट्यो न अंग अच्छा स्वरूप खै अभंग जय नेत नेत उचरंत वेद जय अलख रूप कथत कतेब जय अलख रूप आसन अटोल जय अमित तेज अक्षय अतोल जय ध्यान काज मुंजन अनंत कई कल्प जोग साधत दुरंत तन सीत खाम बरखा सहंत कई कल्प एक आसन बितंत कई जतन जोग विद्या विचार साधंत तद पावत न पार कई उर्ध बाह देशन भ्रमंत कई उर्ध मध पावक झुलंत कई सिमृत सासरद उचरंत वेद कई कोक काव कथत कतेब कई अगन होत्र कई पौन हार कई गर्त कोट मृत को आहार कई गर्त साग पै पत्र भच्छ नई तब देव हो वत प्रत्यक्ष कई गीत गान गंधर्व रीत कई वेद शास्त्र विद्या प्रतीत कहूँ वेद रीत जग याद करम कहूँ अगन होत्र कहूँ तीरथ धरम कई देश देश भाखा रटंत कई देश देश विद्या बढ़ंत कई गर्त भांत भांतन विचार नहीं नैकता सपायत न पार कई तीरथ तीरथ भरमत्सो भरम कई अग्न होत्र कई देव करम कई गर्त वीर विद्या विचार नहीं ददबदास पायत न पार कहूँ राज रीत कहूँ जोग धर्म कई सिमृत सासरद उचरत सो करम न्यौली याद करम कहूँ हस्तदान कहूँ अश्वमेध मुख को बखान कहूँ करत ब्रह्म विद्या विचार कहूँ जोग रीत कहूँ बिरद चार कहूँ करत जाछ गंधर्व गान कहूँ धूप दीप कहूँ वर्ग दान कहूँ पितृ करम कहूँ वेद रीत कहूँ नृत्य नाच कहूँ गान गीत कहूँ करत सास सिमृत उचार कई भजत एक पग निराधार कई नेह देह गई गेह वास गई ब्रह्मत देश देश अनुदास गई जल निवास गई अगन ताप गई जपत उर्द लटकंत जाप कई जपत जो कल्पं प्रजंत नहीं तदप तास पायत न अंत कई करत कूट विद्या विचार नहीं तदप दिष्ट देखे मुरार बिन भगत सकत।

चक्र फिरं जय राग न रंग न रेख रुकं दे शोक न भोग न जोग जुगं भुव भंजन गंजन आदि सिरंग दे बंदत देव देव नरंग गण किन्नर जछ भुजंग रचे मण माणक मोती लाल सुचे अन भंज प्रभा अन गंज मृतंग हे पार न पावत पूर मतंग अनखंड स्वरूप दंड प्रभा जय जंपद वेद पुराण सभा जय वेद कतेव अनंत कहे जय भूत अभूत न भेद लह जय वेद पुराण कतेव जप सत सिंध दो मुख ताप तप गई गलपन लो तब ताप करे नहीं नैक कृपा निध पान पर जय फोकट धर्म सफेद जह एक चित कृपा निध को जप है देव या भव सागर को तर है भव भूल न देह पुनर्धर है एक नाम बिना नहीं कोट प्रति।

न रंग है न मान है न मौत है न साक है न संग है न जज है न गंधर्व है न नर है न नार है न चोर है न साव है न साह को कुमार है न नेह है न गेह है न देह को बनाओ है न छल है न छिद्र है न

खंड रूप है, अछेद है, अभेद है, न रंग है, न भूप है, परे है, पवित्र है, पुनीत है, पुराण है, अगंज है, अभंज है, करीम है, कुरान है, अकाल है, अपाल है, ख्याल है, अखंड है, न रोग है, न सोग है, न भेद है, न भंड है, न अंग है, न रंग है, न संग है, न सात है, प्रया है, पवित्र है, पुनीत है, प्रमात है, न सीत है, न सोच है, न ग्राम है, न घाम है, न लोभ है, न मोह है, न क्रोध है, न काम है, न देव है, न दैत है, न नर को स्वरूप है, न छल है, न छिद्र है, न

है न रूप रेख रार है, न हाव है, न भाव है, न दाव को प्रकार है। गजाधपि नराधपि करंत सेव है, सदा सिदस्पति तपस्पति वनस्पति जप सदा। अगस्त आद जे बड़े तपस्तपि पिसेखिय, बेअंत बेअंत बेअंत को करंत पाठ पेखिय। अगाध आद देव की अनाद बात मानिए, न जात बात मंत्र मित्र सत्र स्नेह जानिए। सदीव सर्वलोक के कृपाल ख्याल में रहे, तुरंत द्रोह देह के अनंत भान।

हस्त गेड विखे बस सब ठौर मैं निर्धार। जात पात न तात जाको मंत्र मात न मित्र, सर्व ठौर विखे रम्यो जह चक्र चिहन न चित्र। आद देव उदार मूर्त अगाध नात अनंत, आद अंत न जानिए अभिखाद देव दुरंत। देव भेव न जान ही जे मरम वेद कतेब, सनक औसन केश नंदन पाव ही न सेब। जछ किन्नर मछ मानस मुर्ग उर्गा पार, नेत नेत पुकार ही शिव सक्र मुख चार। सर्व सबद पतार के तर जाप ही जह जाप, आद देवा गात तेजा नाद मूर्त अताप। जंत्र मंत्र न आवई कर तंत्र मंत्र न कीन, सर्व ठौर रहो विराज तिराज राज प्रवीन। जछ गंधर्व देव दानो न ब्रह्म क्षत्रिय न माहे, वैस नंगे बिखे विराजे सूत्र भी वह नाहे। गुड़ गौड न भील भी कर ब्रह्म शेख स्वरूप, रात दिवस न मध उर्द न भूमा का स अनूप।

देव गंधर्व किन्नर मछ कछ अपार भूमा का जले थले महिमानिय जय नाम। दुष्ट हरता पुष्ट करता श्रेष्ठ हरता काम, दुष्ट हरना श्रेष्ठ करना दयाल लाल गोबिंद। मित्र पालक शत्रु।

समर्पण तर्क वितरकण तपत प्रतापण जपत जिवे जय जय हो श्री सहस्त्र प्रकरखण आद नील अगाध अभे चंचलाज खंगी अलग भुजंगी तुंद तुरंगण तिच्छ सरे कर कसा कुठा।

घंट का बिराजे रुंझुन बाजे भ्रम्भ बाजे सुनत सुरंग कोकिल सुन लाजे किल बिग भाजे सुख उबराजे मथ उरंग दुर्जन दल तज्जे मंथन रिज्जे सभय न भज्जे रोहरणं जय जय हो सीम खासुर मर्दन चंड चक्रतन आद गुरंग चाचरी प्रचोदन दुष्ट विरोधन रोस रोदन क्रूर बिते धूमराज विदुंसन प्रलय प्रजुंसन चक विदुंसन शुद्ध मते जाल पाजयंती शत्रु मथंती दुष्ट

सुर मर्दन सात प्रदक्षण दुष्ट हंते। कारण करीली गर्भ कहिली जोत जतीली तुंद मते अष्टायत चमकण शस्त्र जमकण दामिन दमकण आदवृते डुग डुकी दमंके बाग बबंके भुजा भुरंके शुद्ध गते जय जय हो सीमा खासुर मर्दन हाथ जुगाद अनाद मते चछरा सुर मारण नरक निवारण पति दो धारण एक भटे पापान बिहंडन दूज प्रचंडन खंड।

दयाल दाता दुरंत दुख दोख रहत जह नेत नेत सब भेद कहत। कई उच नीच कीनो बनाओ सब वार पार जा को प्रभाव सब जीव जंत जानंत जाहे मन मूड क्यों न सेवंत ताहे। कई मूड पत्र पूजा करंत कई सिद्ध साध सूर सिवंत कई पलट सूर सिजता कर।

है गनी मन को गारक है, साधन को रक्षक है, गुणन को पहार है, सिद्ध को स्वरूप है, के बुद्ध को विभूत है, के क्रुद्ध को अभूत है, के अच्छय अविनाशी है, काम को कुनिंदा है, के खूबी को देहंदा है, गनी मन गरिंदा है, के तेज को प्रकाशी है, काल हों के काल है, के सत्रन के साल है, के मित्रन को भोगत है, के वृद्धता की बासी है, जोग हों को यंत्र है, के तेज हों को तंत्र है, के मोहनी को मंत्र है, के पूर्ण प्रकाशी है, रूप को निवास है, के बुद्ध को प्रकाश है, के सिद्धता को बास है, के बुद्ध हों का घर है, देवन को देव है, निरंजन अभेव है, अदेवन को देव है, के शुद्धता को सर है, जान को बचैया है, ईमान को दिवैया है, जमजाल को कटैया है, के कामना को कर है, तेज को प्रचंड है, अखंडन को खंड है, महीपन को मंड है, के स्त्रीहन नर है, विश्व को भरण है, के आपदा को हरण है, के सुख को करण है, के तेज को प्रकाश है, पाई न पार पार वार हूं को पार, जग की जत विचार सो विचार को निवास है, हिंगुला हिमालय का वह बसी हल विधव पूर्वी न पार पावया सत्यानाश है, देवन को देव महादेव हूं के देव है, निरंजन अभेवनाथ अविनाशी है, अंजन विहीन है, निरंजन प्रवीण है, के सेवक अधीन है, कटैया जम जाल के, देवन के देव महादेव हूं के देवनाथ, भूम के भुजैया है, मुहैया महाबाल के, राजन के राजा महासाज हूं के साजा महाजोग हूं को जोग है, धरैया द्रुम छाल के, कामना के कार है, के बुद्धता को हर है, के सिद्धता के साथी है, के काल है कुचाल के, छीर कैसी छीरावत छाछ कैसी छतरा नेर, छपाकार कैसी छप काल इंद्र के कूल के, हंसनी सी सी हरुम हीरा सी हुसैनाबाद, गंगा कैसी धार चली सातो सिंध रूल के, पारसी पलाऊ गढ़ रूपा कैसी रामपुर, सूरसी सुरंगाबाद निके रही झूल के, चंपासी चंदेरी कोट चांदनी सी चांदागढ़, कीरत तिहारी रही मालती सी फूल के, फटक सी कैलास कमाऊ गढ़ कांसीपुर, सीसा सी सुरंगाबाद निके सोहियत है, हिमा सी हिमालय हर हार सी हलापा नेर, हंस कैसी हाजीपुर देखे मोहियत है, चंदन सी चंपावती चंद्रमा सी चंद्रगीर, चांदनी सी चंदगढ़ जोन जोहियत है, गंगा सम गंगधार बकांसी बिलंदावाद, कीरत तिहारी की उजियारी सोहियत है, फरासी फिरंगी फरासी के दुरंगी मकरान के मृदंगी तेरे गीत गायत है, भखरी कंधारी गोर गखरी गिरदे जचारी बौन के आहारी तेरो नाम ध्यायत है, पूरब पलाऊ काम रूप कमाऊ सर्व टौर में विराज जहां जहां जाइयत है, पूर्ण प्रतापी चंद्र मंत्र ते अतापी नाथ।

जेते बदन श्रेष्ठ सब धारे आप आपनी बूझ उचारे तुम सब ही ते रहत निरालम जानत भेद भेद अर आलम निरंकार निर्विकार निर्लंभ आद अनिल अनाद असंभ ताका मूढ़ उचारत भेदा जाको भेव न पावत बेदा ताको कर पाहन अनमानत महामूढ़ कश

सब नांगलां समरथ स्वामी सो क्यों मनो विसारे कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले साचे साहिबा क्या नाही घर तेरे घर तां तेरे सब किछ है जिस देह सो पावे सदा से।

जिस सिमरत सुख होए सगले दुख जाए। श्री वाहिगुरु जी अरदास इको ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई ध्याय। फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास होई सहाय। अर्जन हर गोबिंद नौ समराओ श्री हर राय। श्री हर कृष्ण धियाई जिस डिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर

0: मूर्ख पंडित हिकमत हो जा संजय करे प्यार
1: धर्मी धर्म करे के बाबे मंगे मोख द्वार जति सदा वे जुगत न जाने छड़ पे घर बार सब को पूरा आपे को वे घटना कोई आखे पत परवाना पीछे पाइए ता नानक तो ले आ जा पे पहला पहला
0: बदिशो बच्चे।

पौड़ी जितेंद्र सब को विख नदरी हेठ चलाए दाग आपे देह बनाई आपे ही कर्म कराए दाग मिढो बडा वड मेदनी सिरे सरता।